एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, सक संबद 1948, बैसाख माह की तिथि 22, तदनुसार बारह मई ईस्वी सन 2026 आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। कुछ ही पलों में 6 बजने वाले होंगे। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय। ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और साथी। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की गायचंद भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण में लता मंगेशकर और भीमसेन ज्योति की स्वर भीमसेन जोशी के स्वर में गाए चंद भक्ति संगीत।

लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की गाए इस भक्ति संगीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम समर्पण अब हम ही पे संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM की 101.7 MHz पे और अब हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर आइए थोड़ा अवलोकन करते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में परेश दत्ता द्वारी के गाए चंद गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा आप सुनेंगे 7:00। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक के साथ हम होंगे आपके साथ 8:40 पर। कार्यक्रम विविधा आप सुन सकेंगे 9:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन आप सुनेंगे 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण हम करेंगे 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी कार्यक्रम विवरण के साथ 5:02 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार को 5:05 पर। कार्यक्रम किसान बानी का प्रसारण किया जाएगा 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस कार्यक्रम में सुनेंगे टमाटर मिर्च और बैंगन की खेती एवं उन्नत किस्म पर चर्चा, साथ ही कुछ लोकगीतों का आनंद लेंगे आप इसी कार्यक्रम में। मुख्य समाचार सुनेंगे 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बांग्ला कार्यक्रम 7 रंग आप सुनेंगे 6:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे सांथाली कार्यक्रम। इस पर आप टमाटर की आधुनिक खेती पर जानकारी लेंगे श्री वैद्यनाथ हास्ता से। 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा 7:15 पर। फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:00 और समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे 8:45 पर। 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। और 10:00 गज़लों का कार्यक्रम महफिल आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे 10:30 पर। 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। सुनते हैं सुगम संगीत में परेश दत्ता द्वारी के गाए चंद गीत।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा।

प्रेम, मानवता, शिक्षा और सरलता पर आधारित है। प्रेम, मानवता, शिक्षा और सरलता पर आधारित है, जो जीवन को नई दिशा देते हैं। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। हम सभी को गहराई से सोचने और सकारात्मक रहने के लिए ये वाणियाँ प्रेरित करते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की इन अनमोल वाणियों के साथ कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं एक देशभक्ति गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
4: बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहा तो घर आई नहीं हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
7: तुम लोग बुरा मिशन काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है या पाप में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
8: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मिनिमल पुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार फी को लो पुलिस को लो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई तब जय तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
9: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायवासा में। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म अंधा कानून का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बक्सी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंधा कानून का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के लिखे गीत थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे। और अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म घुंघरू की आवाज़ का ये खूबसूरत सा गीत। विजय आनंद के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इम्तिहान। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में। मजरूह के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म थानेदार से। आवाज़ें हैं अमित कुमार, आशा भोसले, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम जोहार चायबासा में अब हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म टैक्सी ड्राइवर से। साहिर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है एसटी बर्मन ने, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

टैक्सी ड्राइवर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। साहिर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था एसडी बर्मन ने। और अब हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है शंकर जयकिशन के, फिल्म का नाम है अनारे।

फिल्म अनारी का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आप सुन

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ थी। संगीत दिया था गुलियार ने, क्षमा करें, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने और बोल थे गुलियार के। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जोहार चायबासा यहीं पे संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर

0: किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के

0: संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल

0: आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने और एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालूघाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का न करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक बार फिर ईंधन बचाने और कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गई है। देश

0: में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों और उनके अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करे। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। प्रदेश भाजपा ने कल धनबाद में बिजली पानी संकट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
1: बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता तराही तराही मांग कर रही है। आज घर में सब सूख रहा है भाई, पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहा है भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में तराही तराही कर।
0: वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाएं घरों में रहने के बजाय घड़ा लेकर सड़क पर उतरने को विवश हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दिखाता है।
2: कहीं गांव देहात में चापाकल भी काम नहीं कर रहा और बिजली की हालत तो देख ही रहे हैं। धनबाद में 19 में यहां लगभग 900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी हुआ था, मैथन फेज 2 और फिर जामाडोवा, लेकिन जो योजना 22 में पूरा होना था वह योजना आज तक नहीं पूरा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, तो इसलिए सब प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: प्रदेश भाजपा ने झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने, अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में रक्त से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के साथ जिलों में ब्लड सेवाओं को और सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में विरामचक दियाजोरी बलबड्डा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत 1,47,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री ने भुस्का पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने और पार्क निर्माण की योजना की जानकारी दी। राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल जमशेदपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यह एम्पोरियम 25,000 बुनकरों, 120 बुनकर समितियों और 220 कर्मियों की मेहनत, हुनर और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने के साथ स्थानीय शिल्पकारों को बाजार से जोड़ेगा।
3: सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री आनंद जी का, रोजगार का बढ़ापा मिलेगा। गांव घर देहात में 25,000 लोगों को अभी तक इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2,00,000-2,50,000 लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और ये इंपोर्ट भी होगा, बाहर भी विदेश भी जाएगा, तो इससे रोजगार को बढ़ापा मिलेगा।
0: चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पीएम कुसुम योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठाने के बाद गिद्धौर का चयन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मॉडल सोलर गांव के लिए किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि यहां के किसान अब खेती

0: के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं।
1: पीएम सूर्य घर योजना जो हम लोग को मिलने वाला है, इससे पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और एक इधर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत मध्य और पूर्वी झारखंड के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ईंधन बचाने, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की दोबारा की गई अपील को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। दैनिक भास्कर ने जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के शामिल नहीं होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने जमशेदपुर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 23 माह बाद जमानत मिलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, कहा पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का ना करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ज पे। प्रस्तुत है

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700

रीना महतो और साथियों के गाए इस कुरमाली गीत के साथ ही श्रोताओं, लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं पे संपन्न करते हैं।

और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज इस कार्यक्रम के साथ होंगे रमेश दास।

کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی سے روٹھو تو ذرا سنبھل کر روٹنا، کیونکہ آج کل منانے کا نہیں سیدھا چھوڑ دینے کا رواج ہے۔ कार्यक्रम विविधा में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। श्रोताओं, आज विशेष दिन है, जी हां, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है नर्सें। गांवों और दूर दराज क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में नर्सों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वे केवल मरीजों की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, जागरूकता और आपातकालीन सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका समर्पण, सेवा भावना और मेहनत समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के इस विशेष दिन में हम सभी नर्सों का धन्यवाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

श्रोताओं, धरती पर इंसान हैं अनेक, कितने हैं उनके कर्म हैं अनेक। वैसे तो अच्छाई की हुंकार बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन सेवा कर्तव्य जिनका पहला, वही असल में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। परंतु किस मापदंड से सर्वश्रेष्ठ को पहचानोगे? किस इंसान को तुम सेवा कर्तव्यनिष्ठ मानोगे? जो दूसरों के दर्द को समझ सके, जीवन का हर पल दूसरों को समर्पण कर सके, बच्चे के जन्म में मदद कर जिसने जीवन की शुरुआत की, दीर्घ आयु में बाबा कहकर जिसने कंपकपाती बाहें थाम ली, जिसने, हम यूं कहें कि जिसके पावन स्पर्श से घाव को भी भर दिया, होंठों पर कोमल मुस्कान ने दर्द से सिकुड़े चेहरे को भी प्रफुल्लित कर दिया, नन्हे बच्चों की आह को भी बिन बोले जिसने समझ लिया, अनसुनी बात को सुन मन का बोझ कम किया। गौर किया जब ध्यान से, तब इस निश्चय पर आए, नर्स ही हैं जिसमें ये सारे गुण हैं समाए, नर्स ही हैं जो सबके दुख को समझती है, नर्स ही है जो हर एक की मन से सेवा करती है, नर्स ही हैं जिसने ना पाला ये भेदभाव का झमेला, क्योंकि नर्स ही हैं जिसका सेवा कर्तव्य है पहला। इसलिए कोई त्रुटि नहीं इस बिनती में, नर्सेस हैं सर्वश्रेष्ठ गिनती में, नर्सेस हैं सर्वश्रेष्ठ गिनती में।

0: दुनिया की सभी अद्भुत नर्सों को नर्स दिवस की शुभकामनाएं। आप अपने काम के प्रति जो समर्पण दिखाते हैं वह अद्भुत और प्रशंसनीय है। अब आइए मिलते हैं सिस्टर ओम से। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये क्यों मनाया जाता है?
1: मेरा नाम ओम कुमारी सुमरोई है और अभी मैं ब्लड बैंक में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हूँ। और आज के दिन जो नर्सेस डे जो हम मनाते हैं वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन नर्सिंग के संस्थापक और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक जो कि लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 की

0: इटली के फ्लोरेंस शहर में जो एक समृद्ध ब्रिटिश परिवार में हुआ था, और उस समय नर्सिंग को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने 1884 में इस क्षेत्र में आने का निश्चय किया, और युद्ध के दौरान उन्होंने 38 नर्सेस के साथ मिलकर घायल सैनिकों की देखभाल किया, और वो रात में लालटेन लेके मरीजों की जांच करती थी, जिससे उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई पर जोर दिया, जिससे सैनिकों की मृत्यु दर पे भारी कमी आई, और उन्हीं की याद में हम ये नर्सेस डे मनाते हैं हर साल।
1: एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने नर्सिंग के पेशे को ही क्यों चुना, क्या कोई ऐसा कोई खास उद्देश्य था या कोई घटना?
0: इसलिए हमने चुना क्योंकि हमें एक सेवा में आना चाहते थे। हम किसी भी रूप में एक जमीनी स्तर पर एक मरीज की सेवा करना चाहते थे, और इससे सिर्फ ये है कि हम सिर्फ मरीज ही नहीं जो मतलब हर जगह से आते हैं, हम अपने घर में भी एक एक मेंबर को भी नर्सिंग के द्वारा एक अच्छा मतलब जीवन मतलब सेवा करते हैं, उन्हें अच्छा जीवन शैली को अच्छा मतलब और इम्प्रूव करते हैं।
1: अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जब आप मरीजों की सेवा करते हैं और जब आपका मरीज जब स्वस्थ हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है?
0: मरीज जब स्वस्थ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वो लोग हमें थैंक यू बोल के जाते हैं। जैसे वो आते हैं तो हमें याद रह जाता है कि कौन से मरीज कहाँ के हैं, मतलब उनके बारे में सब चीज़ याद रहता है, और उनको हम लोग बोलते हैं तुम लोग इतना जल्दी आ गया, अगर दोबारा आते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं दोबारा मत आना, अच्छा से रहना घर में, अच्छा से खाना पीना ध्यान देना, और मतलब दोबारा वापस मत आना हम लोग के पास।
1: तो आज के दिन और भी नर्स बहनें हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारे नर्सेस बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आगे के लिए जैसे जो स्किल्स है हमारा उनको हम लोग डाउनफॉल नहीं करना चाहिए, जो भी नर्सिंग स्किल्स है उनको अच्छे से अच्छे स्किल्स के साथ अच्छे सेवा और मन लगा के सेवा देना है, अपना पूरा मन से पूरा सेवा देना है।
1: अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि कोरोना का समय ऐसा था जब अपने साथ नहीं देते थे, उस वक्त आप लोग फ्रंट लाइन के रूप में आप लोग काम कर रही थी, तो उस समय कैसा लग रहा था, क्या आपको डर महसूस हो रहा था या फिर जो मरीज है या जो कोरोना से ग्रसित है उनकी सेवा कर रहे हैं कैसा लग रहा?
0: डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहले जैसे घर में रहते हैं और जैसे न्यूज़ सुनते हैं तो डर लगता है, लेकिन जैसे हम लोग हॉस्पिटल में कदम रखते हैं वो डर अपने आप ख़त्म हो जाता है, और हम लोग मतलब दौड़ जाते हैं पेशेंट के लिए कि हम लोग को उनको बचाना है। तो कोरोना के टाइम में भी हम लोग वही किए, हम लोग ये नहीं देखे कि हमको होगा, लेकिन मतलब जैसे डर रहे थे सब लोग कि इनसे फैल रहा है उनसे फैल रहा है, लेकिन कोई भी सिस्टर्स उस समय में डरी नहीं, और वो है कि सीधा मतलब मरीजों के पास सीधा चले गए, अपना जो भी एक अपना पीपी किट सब है जो भी है अपना सुरक्षा के लिए अपना यूज़ करके मरीजों की देखभाल में दिन रात लग गए, बिना खाए पिए भी हम लोग एकदम लग गए थे कि हम लोग कोरोना मरीज को जल्द से जल्द ठीक कर सके।
1: चलते चलते एक बात और आप समझाना चाहेंगे कि आप अपने परिवार को भी देखते हैं और यहाँ भी मरीजों को देखते हैं, ऐसे में आपको क्या कुछ हम यूँ कहें कि टेंशन नहीं लगता है?
0: नहीं, टेंशन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसे बीमार हो जाते हैं ना लोग हमें खोजते हैं, और हम खुद भी मतलब जैसे दूसरों के ऊपर हम यकीन ही नहीं कर पाते कि वो अच्छा से केयर कर पाएंगे, तो हम लोग खुद ही अपने केयर करने लग जाते हैं, तो वो जो नर्सिंग केयर है वो हमारे रग रग में बस गया है, वो हम नहीं सोचते हैं कि हम केयर कर रहे हैं, हम बस केयर करते जाते हैं।
1: चलिए, आपकी लगन और आपकी सेवा भावना हमेशा बने रहे,
0: धन्यवाद।
2: जोहार सभी को, मैं डॉक्टर शिवचरण हाजदा, उपाधीक्षक सदर अस्पताल चाईबासा। सबसे पहले तो मैं अपने नर्सिंग स्टाफ या सेवा में कार्यक्रम में लगे हैं हमारे सभी दीदियों को बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से। चूँकि हम सभी को पता है आज के समय में जो है स्वास्थ्य का जो महत्व है कितना है, और ऐसे समय में हमारी जो दीदियाँ हैं साल भर जो है अपने परिवार के अलावा जो है पेशेंट के प्रति जो उनका जो जज्बा है, तत्परता बोलिए या फिर एक मानवता का सेवा में जो लगे रहते हैं, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उनका काम ही ये है, लेकिन ये तो उनका जज्बा या मानवता का सेवा में जो लगे हैं उनको तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। और चूंकि

0: सभी को पता है, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो दीदी रही है, उनके कामों को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने के प्रेरणा स्रोत के रूप में हम ये दिवस मनाते हैं। तो मैं उनके सारी दीदियों के, जो भी हमारे जो सदर के अलावा जो दूर दराज क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ नदी पार करके गर्मी धूप में जो है अपने शरीर को तपाते हुए कार्य करते हैं, तो मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनको जो है मेरे स्वस्थ परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आने वाले समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं डॉक्टर जगन्नाथ हेमरम आज इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की अवसर पर तमाम नर्सों को, जितने भी नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े हुए कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी जानते हैं ये जो नर्सिंग व्यवसाय है कितना नेक व्यवसाय है। इस व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी सेवाओं को ये सम्मान देते हुए। मैं ये भी बताऊं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 के आसपास में हुआ था, उनकी मृत्यु हुई 1910 में। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की जो पहचान उस जन्मतिथि को मिली, 12 मई को जिस दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये 1965 के इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिंग और काउंसिल ऑफ नर्सिस में ने इस दिन को 1965 से 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मनाया। अभी तो इस दिन को, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस को मान्यता मिली ऑफिशियल रूप में 1974 से, तब से हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस को नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों को के सम्मान में ये दिन को याद करते हैं। ये भी बताऊं कि नर्सेस जो है ना, सच कहा जाए तो अगर डॉक्टर अगर सेनापति है तो ये हमारी जो नर्सेस हैं ये असली सेनानी हैं। ये सीधे वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, जहाँ पर तमाम बैक्टीरियाज, तमाम वायरसेस, तमाम खतरे के सारे चीज़ मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये हमारी नर्सें काम करती हैं। तो यूँ समझ सकते हैं आप कि डॉक्टर्स अगर मान लिया कमांडर्स हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, तो असली जो हमारे बहादुर सैनिक हैं वो हमारे नर्सेस हैं, जो बॉर्डर पे जाकर के दुश्मन से लड़ते हैं, जिसको मैं सेनानियों से कम नहीं आंकता हूँ। आज के इस पावन दिन पे मेरी तरह से हमारे तमाम नर्सेस को मैं आपको ये भी बता दूं, साथ में हम सभी नर्सेस मतलब फीमेल ही समझते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे हमारे मेल नर्सेस भी हैं। तमाम उन लोगों को, नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस दिन में सभी इतने वर्षों के बाद भी ये नर्सिंग व्यवसाय इतने दिनों तक गुजर गया। कई व्यवसाय जो है ना बदनामी का शिकार हुए, लेकिन नर्सिंग जो व्यवसाय है अभी तक अछूता रहा है उन तमाम तरह की दुनियावी थपेड़ों से। आज मैं शुभकामनाएं देता हूं, आगे भी इसी तरह हमारे नर्सेस जो है वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस व्यवसाय को, नेक रूप जो व्यवसाय है इसकी ऊंचाई को बरकरार रखें। इनकी नेक नियत है, जो ईश्वरीय जो व्यवसाय है इसकी परंपरा को जारी रखें। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, वो दीर्घायु हों, उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, और जितने दिन हों लंबे समय तक, जब तक वो, मैं मुझे पता है हमारे जितने भी नर्सेस हैं वो अंतिम समय तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो चाहे वो किसी संस्था से क्यों ना जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी सरकार से क्यों ना जुड़े हुए हों, सेवानिवृत्ति उनके लिए बस एक सिर्फ एक दिनांक भर है। उस दिनांक के बाद भी जब भी हमारी नर्सेस के सामने कोई भी व्यक्ति कोई भी तकलीफ में होता है तो जो नर्स वाला दिल जो है वो पक्का जाग उठेगा और वो ज़रूर सेवा करेंगे।

0: मुझे पता है, तो मैं उनको उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ और ये मेरा पूरा विश्वास है कि वो अपने अंतिम समय तक भी मानवीयता को सेवा करेंगे। ये मेरी तरफ से आशान्वित हूँ और साथ में ये भी है कि मैं इसी तरह वो काम करते रहें, ये हम सभी उनके साथ हैं। जब कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी एक डॉक्टर के रूप में और एक मानव के रूप में, मैं उन सभी नर्सों के साथ हर समय पीछे खड़ा मिलूँगा। धन्यवाद, सभी को जोहार और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: निश्चल मन, किसी ना भेदभाव करती हैं हर किसी की सेवा वो अपने जीवन में, नहीं देखती अपना और पराया, हमेशा हर किसी के लिए समर्पण से करती हैं। तकलीफ में जब अपने भी कभी साथ छोड़ जाते हैं तब भी ये अपना कर्तव्य निभाती है। बस यही होती है एक नर्स की कहानी। सेवा ही कर्म उसका, हरदम रोगी की सहायता करती है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

तो इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार फिर कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दे, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं 101.7 MHz पे। सुबह के 9:30 होने को हो चुके हैं और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का ये सुंदर सा गीत अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे

0: ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रंजन में। हीरो इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। रेशमा की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ है, कार्तिक अवस्थी के बोल है, संगीत दिया है बाली ब्रह्म भट्ट ने।

फिल्म दुश्मन का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर के स्वर, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम रसरंजन अब हम ही पे समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से
4: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे हैं।

0: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
1: कोशिश करता हूँ।
0: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
0: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: विद्या विद्या
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
0: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी,
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
0: जी,
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
0: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
0: जी?
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका,

0: मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी

0: ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक

0: पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र के कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कृति
1: और मैं विनोद।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार। जीवन की सुंदरता का असली महत्व यह है कि यह दूसरों के लिए कितना मूल्य रखती है। दूसरों की मदद करने में बिताया गया जीवन एकांत में बिताए गए जीवन से काफी अधिक मूल्यवान होता है। जीवन की सच्ची सुंदरता का महत्व इस बात पर निहित होता है कि वह दूसरों की देखभाल और मदद के लिए किस प्रकार खर्च किया जाता है।
1: प्रेम का बिखराव जीवन में दूसरों के लिए जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सुंदर होगा। जीवन एक उस खड़े पेड़ की तरह है जो प्रकृति के तत्वों पर पक्षियों और राहगीरों का सामना करता है और यह एक अकेले रह रहे आदमी की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है।
0: बिल्कुल, और हर एक जीवन महत्वपूर्ण है उससे, और यह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, इस दुनिया में अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और सभी एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
1: भले ही वो चाहे एक छोटी प्रजाति की हो और इस ग्रह से लुप्त हो गई हो, लेकिन यह दूसरे जीवों की को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए हम सभी के जीवन के लिए यही हित में है कि हम सभी जीवन प्रजाति के रूपों को महत्व दें और ग्रह के प्रत्येक जीवों को भी बराबर महत्व दें और उसकी रक्षा करें।

0: अब आगे बढ़ते हैं इतिहास की ओर और हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो 1459 में आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना हुई और 1689 में आज ही के दिन इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाया।
1: 1925 में आज के ही दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने। आज ही के दिन 1965 में इजराइल और पश्चिम जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया।
0: और 1999 में आज ही के दिन रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिस कार्यवाह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए।

0: अब आगे पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और आपको बता दें कि आज ही के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1945 में भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण का जन्म हुआ था और 1895 में आज ही के दिन जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, जो आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक थे।
1: और आज के ही दिन 1954 में के पलानी स्वामी का जन्म हुआ, जो राजनीतिज्ञ एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री थे। शिखा पांडे का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1989 में, जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

0: अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास में आपको बता दें कि आज ही के दिन 1993 में शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रगतिशील कवि, लेखक और चित्रकार थे।
1: उन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलनों से जुड़े थे। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना और बिंब विधान की गहरी झलक मिलती है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची, और हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए समर्पित है।
6: और अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य प्रणाली में नर्सों की भूमिका को रेखांकित करना, उनके काम का सम्मान करना और मरीजों की देखभाल के प्रति उनके समर्पण के लिए आभार व्यक्त करना है। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है, ने क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की थी और उन्हीं के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है।
5: और यह दिन COVID-19 जैसी महामारियों के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में नर्सों के साहस और योगदान को सम्मानित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

0: संस्कृति और अब मौसम की बात तुम देख रही हो कि इधर पिछले कम से कम हम एक सप्ताह की बात कर सकते हैं कि दिन में धूप होती है और फिर शाम होते होते बादल मंडराने लगती है। हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश भी अगर हम प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में हुई है और राजधानी रांची में भी हुई है। तो झारखंड में अगर मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 17 मई तक यह जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सुबह के समय उमस और गर्मी महसूस पूर्ववत होती रहेगी, जबकि दोपहर बाद आंधी मेघ गर्जन और बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जैसा कि अभी जारी भी है। 12 मई को यानी कि आज की बात करें तो रांची सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट इस बाबत जारी किया गया है।
1: और इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी, पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई को यानी कि कल की बात हम कर रहे हैं, राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। 14 मई और 15 मई को भी अधिकांश जिलों में दोपहर बाद मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 15 मई को पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।
1: और मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश और हिमालय क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की ओर सक्रिय है। इस वजह से झारखंड में लगातार मौसम अस्थिर बना हुआ है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: और कृति, अब बात सैड सपाटे की. जैसा कि हर दिन हम अपने आवाज़ की दुनिया को दोस्तों को एक नई जगह से परिचय करवाते हैं कि सैड सपाटे के लिए अब अगर अभी की बात करें तो कौन सी मुफीद जगह है, वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ क्या रहनी क्या व्यवस्था है, वहाँ का खास व्यंजन क्या है. तो आज कहाँ ले चलना है, बढ़े आगे हम.
2: तो आज हम हमारे श्रोताओं को मनाली घूमने ले जा रहे हैं. और आप सभी को बता दें कि मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है.
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शहर है. कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है. समुद्र तल से अगर हम बात करें तो 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली ब्यास नदी के किनारे यह बसा है.
2: और गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं. सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है.
1: आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं.
2: और यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छन कर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है. पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा जाता है. कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, जो मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य को पुनर्रचना किया.
1: तो अब आपको बताते हैं कि आप मनाली में कहां कहां घूम सकते हैं. तो दोस्तों, आप जा सकते हैं हिडिम्बा मंदिर. यह समुद्र तल से 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसे ढोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.
2: आप मणिकर्ण भी जा सकते हैं. यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. और यहाँ का आप पानी झरना भी देख सकते हैं. कहा जाता है कि पार्वती माँ के कर्ण फूल यहाँ खो गए थे, उसके बाद ही इस झरना का जल गर्म हो गया है.
1: मनाली में बहुत सी रोमांचक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं. ये जगह वैकेशन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है.

0: और अब बातें कुछ लोक कलाओं की। हम बात करेंगे कलमकारी की, जो कि भारत की प्रमुख लोक कलाओं में एक है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापे बनाई जाती है।
1: और कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है।
0: सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबा कर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध माड़ के घोल में डुबाया जाता है।
1: बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधे, पत्तियों, पेड़ों की छाल, तनों आदि का उपयोग किया जाता है।
0: भारत में कलमकारी के दो रूप प्रधान रूप से विकसित हुए हैं, वे हैं मछिलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकला हस्ती कलमकारी।

0: और कृति, अब चलते चलते कुछ सामान्य सी बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो खान पान में सावधानी बरतने की बात तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, और
1: हाँ
0: चाहे वो योगाचार्य की बात हो या किन्हीं की बात हो, संतुलन बहुत जरूरी है खान पीन में। तो अगर हल्का और ताज़ा भोजन अगर हम करते हैं तो बाहर का तला भुना या खुला खाना खाने से बचें, घर का बना हल्का और ताज़ा खाना ही खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर का सेवन करें। इससे जो विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर की, उसकी पूर्ति हो जाती है।
1: हाँ, और जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम कितना बदल रहा है, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो ऐसे मिश्रित मौसम में बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो संक्रमण, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
0: बिल्कुल
1: तो अब वक्त हो चुका है हमारे श्रोताओं से विदा लेने का।
0: कहते हैं नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार,
1: जुहार।
0: और सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और पहली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मनी कपूरी, लक्षनपुर से हैं विश्वनाथ साहू और पिपरिया से है दुर्गा राम साहू। इन लोगों ने फरमाइश की है यस बॉस फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, और इसे भेजा है हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जेतेक बीरक और इनके साथ है मीका बीरक। इन लोगों ने फरमाइश की है कोई मिल गया फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण और KS चित्रा ने, शब्दबद्ध किया है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

राजा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे।

अब आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से और इसे भेजा है श्रद्धानंद आर्या, अभय आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इन लोगों ने फरमाइश की है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है केके और सिरेजो ने, शब्दबद्ध किया है नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है सरगुजा मेन पार्ट से और इसे भेजा है सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा ने। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम, आसमा और अकरम। इन लोगों ने फरमाइश की है तेरे नाम फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हरे भरे पेड़ों से सजता है संसार, स्वच्छ हवा से महकता है हर परिवार,
1: प्रकृति से जुड़कर ही जीवन खिलता है, हरित जीवन शैली से भविष्य संवरता है।
0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत सफर में हाजिर है हम दो सखियां, मैं महजबीन
1: और मैं रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी स्नेहिल नमस्कार। आशा है आप सब बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ सुखद समय बिता रही होंगी। और फिलहाल आप सुन रही हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जहां बात होती है घर, समाज और जीवन से जुड़े उन विषयों पर जो हम सभी के भविष्य को सुंदर बनाते हैं। क्यों महजबीन?
0: हाँ बहनों, हर सुबह की ताजी हवा, बारिश की बूंदें, पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से सब जिस तरह से प्रकृति की वो अनमोल उपहार हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, संतुलित रखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा महजबीन। जीवन की असली सुंदरता केवल बड़े घरों, चमकती रोशनियों या आधुनिक सुविधाओं में नहीं होती बहनों, बल्कि उस शुद्ध हवा में होती है जिसे हम खुलकर सांस ले सके,
0: उस ठंडी छांव में होती है जहां मन को सुकून मिले और उस हरियाली में होती है जो हर धरती को जीवंत बनाए रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
0: बहनों। सुबह सुबह जब पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहाती है, हल्की हवा चेहरे को छूती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को ताजगी देती है, तब एहसास होता है कि प्रकृति ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो शक्ति है उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे लिए है, और हमें इससे जो फायदे हैं वो उठाने और उनकी जो हिफाजत है वो भी हमें करनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महजबीन। प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है बहनों, लेकिन बदलती जीवन शैली में हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज सुविधाएं बढ़ रही है मगर पर्यावरण लगातार संकट में है। कहीं पानी की कमी तो कहीं बढ़ता प्रदूषण, कहीं मौसम का असंतुलन, और ये सब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय है अपनी आदतों को बदलने का।
0: जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही प्रकृति पर बड़ा असर डालती हैं। कभी प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, कभी पानी की बर्बादी, तो कभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये सब मिलकर हमारी धरती माँ की मुस्कान छीन रही है और इसकी जिम्मेदारी हम पर ही है। यानी कि हमने इन्हें जिस तरह से काटा है, इनको हम इनका हम दोहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हम देखेंगे कि इसको अगर बचाएंगे तो ये भी हमें कहीं ना कहीं कदम उठाना है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें।
1: बिल्कुल, प्रकृति हमें हर दिन जीने का नया संदेश देती है बहनों, लेकिन अब समय है ये सोचने का कि जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिलता है उसे लौटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बहनों प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, करती भी है, लेकिन लालच नहीं।
0: और ये बहुत गहरी बात है बहनों, जब जब इंसान प्रकृति के करीब रहता है जीवन खुशहाल रहता है, और जब जब उससे दूर हुआ समस्याएं बढ़ती चली गई, तो क्यों ना प्रकृति के करीब रहा जाए, प्रकृति के साथ हरित जीवन शैली को अपनाया जाए।
1: हाँ बहनों, प्रकृति के साथ हरित जीवन शैली यानी ऐसी जीवन शैली जो हमारे जीवन को भी स्वस्थ बनाए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे।
0: हरित जीवन शैली सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हम कर सकते हैं, जैसे घर में पानी की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, रसोई

0: कि मैं जो जैविक कचरे है उसे का खाद बनाना और अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना।
1: बिल्कुल, और यहाँ मैं कहना चाहूंगी महजबिन की प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और विश्वास रखिए बहनों कि ये छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं, धरती को हरा भरा बना सकती है। घर को सुंदर और सहेज कर रखना तो हर महिला की खूबी होती है, लेकिन आज वक्त सिर्फ घर ही नहीं हमारी धरती को भी संवारने का है।
0: और हरित जीवन शैली कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। हमने जैसे कि उपाय में भी पहले बताया, ये आप कर सकती हैं। ये तो छोटी छोटी अच्छी आदतों का नाम है। बिजली और पानी की बचत करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, कपड़ों या कागज का दोबारा उपयोग करना, ये बहुत ही मामूली बात है। यानी कि हम अगर कहें ना कि हम अपनी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसमें सुधार ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये मामूली तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और घर की महिलाएं इस बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं बहनों। रसोई से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक, जैसा कि महजबीन ने कहा, यदि हर घर में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील सोच विकसित हो जाए तो पूरा समाज हरियाली की ओर बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल बहनों, प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के सब कुछ दिया है और दे भी रही है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसे सुरक्षित रखें और उसका सम्मान करें और अपने जीवन को प्रकृति के करीब लाएं। और हाँ, लाना भी जरूरी है रानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और महिलाएं यदि ठान लें तो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि घर की हर छोटी आदत आने वाली पीढ़ियों की सोच बन जाती है। यदि बच्चे बचपन से ही प्रकृति से प्रेम ना सीखे तो आने वाला कल अधिक सुरक्षित और सुंदर भी हो सकता है।
0: हाँ बहनों, और अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए हम बहनों कि हम बूंद बूंद से ही सागर बनता है, जिसे ये तो बात हमने सुना है। अगर हर घर छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने लगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी और सुंदर हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा। प्रकृति, धरती माँ, हर मौसम में हमें कुछ न कुछ सिखाती है। बारिश सहेजना सिखाती है, पेड़ धैर्य सिखाते हैं और बहती नदियाँ निरंतर आगे बढ़ना। बस जरूरत है तो प्रकृति के इन संदेशों के साथ साथ हरित जीवन शैली को अपनी जिंदगी में अपनाने की, एक ऐसी जीवन शैली जो सेहत, सुकून और पर्यावरण तीनों को साथ लेकर चलती है।
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई के अवसर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं स्मिता और इनसे बातचीत कर रही हैं रेडियो सखी महजमीन।
6: बहनों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी उपाय बताते हैं कि आप किस तरह से कहां से शुरुआत कर सकती हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप किस तरह से करियर बना सकती हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं आजकल जो असीमित है। अगर आप इस विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमने आज अपने मेहमान को आमंत्रित किया है जो हमें बहुत सारी जानकारियां

0: करेंगे। मिलिए आज के मेहमान से। आज की हमारी मेहमान है स्मिता, जो कि पेशे से उद्यमी है और अपना कारोबार करती हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए।
0: हमें और हमारी बहनों को सबसे पहले ये जानकारी दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में बुनियादी शुरुआत कैसे करें, क्या करें, ताकि उन्हें एक जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बहुत असीमित माना गया है, तो कहाँ से शुरुआत कर सकती हैं?
1: आज के समय में अगर कहें तो दुनिया सभी के हाथों में है हमारे फोन के माध्यम से, और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस चीज को ज्यादा अच्छे से दर्शाता है, क्योंकि सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के पहले हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हों तो हम क्या बना रहे हैं, क्या दे सकते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो, आज ही नहीं आने वाले समय में भी। और मार्केट ऑब्जर्वेशन, मार्केट के बारे में जानकारी कि आपका क्या प्रोडक्ट बिकता है, ज्यादा से ज्यादा हम क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि हम ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उसके लिए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने चुन लिया, लेकिन बेचना क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये डिसाइड करना कि हम क्या बेचने वाले हैं, तो इसलिए मैं एक तो देखें, आप अगर समझें तो व्यवसाय करना या कोई स्टार्टअप शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, और उसके लिए बहुत आत्मविश्वास के साथ उसमें एंटर करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज शुरू किया और आज से ही पैसे आएंगे। अगर मैंने जब अपना पहला व्यवसाय किया था और एक महीने में एक मात्र एक सामान मैं बेच पाई थी, और वो खुशी मैं आज भी नहीं बयां कर सकती शब्दों में।
0: जी, खुशी तो होती ही है क्योंकि आपने शुरुआत की, और इसमें आपको कहीं ना कहीं एक एक इंसान भी, अगर एक आपके जो कस्टमर है वो भी मिल जाते तो वो भी बहुत ही मायने रखती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सही प्लेटफॉर्म का चुनाव में आप क्या कह सलाह देंगे कि किस तरह से?
1: दो तरीका है,
0: शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है और सही चुनाव करना भी एक परेशानी होती है, तो आप इसे देखती है?
1: तो इसमें दो तरीका है। पहला कि वैसा प्लेटफॉर्म चुनने की कोशिश करें जो ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचे, जिसकी रिच ज्यादा हो, और दूसरा कि हमें ये भी देखना है कि प्लेटफॉर्म वैसा हो जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी सही सही से निकल जाए। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहां पे उनका जो सिस्टम ऑफ सेलिंग होता, मतलब मैंने मान लीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे सामान रखा, तो वो सामान रखने की प्रक्रिया जटिल ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी टेक्निकली एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है।
0: जी, आपने सही कहा कि शुरुआत में तो सभी को दिक्कत होती है, और सीखने और संसाधनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जिससे कि शुरुआत उनकी अच्छी हो, यानी अगर वो शुरुआत कर रही हैं तो इसे आप किस तरह से समझाएंगी?
1: देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पैसे बाजार में लगाने से पहले अगर आप बाजार समझने के लिए पैसे खर्च करें तो वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ बेचना है, तो उस सामान को बाजार में खरीदने वाले लोग कितने हैं, क्या प्रक्रिया है, और उसको बनाने में मुझे क्या खर्च आएगा और बेचने में मुझे क्या मिलेगा, इन चीजों को समझने के लिए पहले पहला खर्चा मार्केट स्टडी पर करना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग इसलिए भी उदास हो जाते हैं कि इनको सही रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि इनकी शुरुआत अच्छी नहीं रहती।

0: या उनकी पहुंच भी अगर कहें तो अच्छी नहीं रहती है, तो क्या आप उनको सलाह देंगी कि वो अपना धैर्य ना खोए?
1: बिल्कुल, धैर्य बहुत जरूरी है। जैसा कि हो सकता है कि आपने जो बनाया हो उसको लोगों तक पहुंचने, लोगों को समझने में भी थोड़ा वक्त लगे, तो इसलिए धैर्य ना खोएं। हो सकता है 1 महीने के बाद ही आपका काम सही से शुरू हो, लेकिन वो 1 महीना जो आपने धैर्य रखा, धैर्य का फल मीठा होता है, कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो धैर्य रखें। धैर्य किसी भी व्यवसाय में धैर्य भी बहुत आवश्यक कड़ी है।
0: आपने जो भी टिप्स दी हैं मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी है और अच्छी बातें आपने बताई कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पहुंच में होती है, धैर्य रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में जो भी दिक्कत और परेशानी होती है उस पर आप अपने जो धैर्य है उसे बिल्कुल भी ना छोड़े, उसे उस पर आप टिके रहे।
1: जी
0: चुनौतियां तो हर बिजनेस में होती है, जैसा आपने कहा कि चुनौती भी है, धैर्य भी रखना है और यहाँ पे भी चुनौती का सामना करना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं, यानी जिस तरह की
1: देखिए,
0: आपकी
1: आपको
0: मौत होगी?
1: जीवन ही चुनौती है। आप
0: जी
1: हर दिन जो जीवन जीते हैं, आप रात में सोते हैं तो सुबह उठेंगे, इस बात की क्या गारंटी होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही आज का दिन बुरा गया, अगर व्यवसाय में पहला दिन बुरा गया तो अगला दिन बुरा जाएगा, इस ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं हर वक्त उम्मीद, उम्मीद भी बहुत जरूरी चीज है। हम उम्मीद करके चलें कि अगला दिन बेहतर होगा, आज से बेहतर कल होगा। और ये अपने आप को मैंने शुरुआत में ही कहा कि व्यवसाय इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं और आप लोगों तक क्या लेके पहुंच रहे हैं। अगर वो क्लियर है तो लोग आप तक पहुंचेंगे ही, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो आप तक पहुंचेंगे। इसलिए धैर्य रखें, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करें, खुद पर भरोसा करें और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। विश्वास बहुत बड़ी चीज है।
0: तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अंत में आप क्या संदेश देंगी कि ये शुरुआत अच्छी हो और पेशेंस भी जरूरी है, और जिस तरह से हम अगर कहें कि शुरुआत करने का जो जज्बा है आप में कूट कूट कर भरा हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, और जिस तरह से आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो एक संकोच भी होता है और ये लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, इतने सारे बाजार में प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्या हम हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि जो भी शुरुआत करना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत अच्छी हो और वे आगे तक तरक्की करें?
1: मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप भरोसा रखें खुद पर, और दूसरा कि अपने प्रोडक्ट पर भी उतना ही भरोसा रखें। तीसरी बात कि माउथ पब्लिसिटी, आप लोगों को बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने परिचितों को बताएं। और भी जो भी तरीका है, आप हर तरीके से लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत जरूरी होती है। आप भी जानती हैं आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है कहते हैं, तो पब्लिसिटी पे भी ध्यान देना है। प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, और अगर आपने प्रोडक्ट सही दिया है तो लोग एक बार तो लेंगे ही और बार बार भी आपके पास लेने आएंगे।
0: जी, आपने हमारी जो गृहलक्ष्मी महिलाएं हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो महिलाएं घर संभाल रही हैं और कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। मैम आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म में। कमाई के अवसर इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी स्मिता, और इनसे बातचीत कर रही थी रेडियो सखी।

0: सुकून तो बिल्कुल हमें जब होना है जब तक हम जागरूक नहीं होंगे वायु प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव से बचने के। बहनों अपने जो किस तरह से महसूस भी किया होगा कि सुबह की हवा अब उतनी ताजी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। खिड़की खोलते ही जो ठंडी साफ हवा चेहरे को छूती थी उसकी जगह अब कहीं ना कहीं धुआं और धूल सा महसूस होने लगा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो वायु प्रदूषण है और इसका मतलब है कि हवा में धूल धुआं और हानिकारक गैसों का मिल जाना, ये हमारी सेहत के लिए सभी के लिए नुकसानदेह है।
1: बिल्कुल सही कहा मैं जबीन। जहाँ पहले सुबह की हवा में एक अलग ही मिठास होती थी, पेड़ों से आती ठंडी हवा जैसे पूरे दिन को सुकून दे जाती थी, लेकिन आज तेज रफ्तार जीवन और बढ़ते प्रदूषण ने उस स्वच्छ हवा को धीरे धीरे धुएं और धूल में बदल दिया है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, है ना?
0: लगातार प्रदूषित हवा में रहने से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। बहनों छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये समस्या आज बहुत आम हो गई है लेकिन ये भी बहुत गंभीर मानी गई है। सड़क पर दौड़ते वाहन, फैक्ट्रियों का धुआं, कचरा जलना, पेड़ की आंधाधुंध कटाई, ये सब मिलकर हवा को खराब कर रहे हैं और इस तरफ हमें जागरूक होने की जरूरत है।
1: बिल्कुल। और क्योंकि साफ हवा सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन, कहें तो स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शर्त है बहनों। और बहनों इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। अब अपनी सखी रानी
0: और महजमीन को दे इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ।

0: प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
1: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, हो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है?

0: क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
0: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
0: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
0: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
0: हाँ,
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: जी
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर। ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
3: इन्हें हमारा सलाम।
2: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
4: नमस्कार
2: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
4: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
2: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
2: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
4: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
2: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
4: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
2: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
4: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।

0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। एल्बर्ट भी आसपास के गांवों में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने

0: युद्ध नायक हैं, जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
1: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
0: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं,
1: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा
0: सलाम।
2: परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

0: विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर

0: तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the

0: जारी की है। नई नियमावली में लीज भुगतान प्रणाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। नए प्रारूप के अनुसार लीज अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से होगी। इसके अंतर्गत लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। इससे राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राजस्व मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
1: इस राज्य में अधिकांश लोग मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो अंगिका बोलते हैं। पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
0: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।
2: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% से 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई आंदोलन पे उतरना पड़े, यहाँ नहीं तो सदन में।
0: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा। वर्तमान जेटेट परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
3: ये अबुआ सरकार आर आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरा संताल परगना डेमोग्राफी बदल रहा है, उसमें बोकारो भी हो चुका। अबुआ सरकार में आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है, ना मां बहन का सुरक्षित।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पेशा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पोलिंग पर बल दिया है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स

0: दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलार चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलाट आत्मरक्षा, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पेंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जाँच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आप

0: आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: आप सुन रहे हैं उपशास्त्र संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब

0: दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूं कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे इतना करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम को शुरू करते हैं RRR फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है विशाल मिश्रा और बेनी दयाल ने, शब्दबद्ध किया है रिया मुखर्जी ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

0: अब आप सुनिए जवान फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत भी दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।

थिरक थिरक थकना क्यों ना।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनिए वीर जारा फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अब आप सुनिए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन ने। शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची में बिजली पानी के गंभीर संकट को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकट, हर घर में नल, जल जीवन मिशन,

0: राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन कर कामकाज ठप किया जाएगा। उधर लोहरदगा में भी भाजपा ने विधायक शशिभूषण मेहता और जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त ने राज्यपाल को राज्य की विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति से अवगत कराया। दोनों के बीच राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा करते हुए इसका नाम जल्द झारखंड आई बैंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, भूमि विवाद सुलझाने और सीएसआर फंड से आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को कहा ताकि इसे राज्य का उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र बनाया जा सके। गिरिडीह पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इस विशेष स्कूटी दस्ते को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह दस्ता मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के पास गश्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल 112 पर संपर्क कर सकती हैं।
1: महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत गिरिडीह में की जा रही है और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग, जहाँ भी महिला कॉलेज है, जहाँ पे की कोचिंग सेंटर्स है, उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो। हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं, डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप संपर्क करें।
0: रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से रविवार से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे का शव बरामद हो गया है। बच्ची का शव गाड़ी गांव इलाके के एक बड़े नाले से मिला है। लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी थी और सुराग देने वाले को 50,000 रूपए इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह जांच कर रही है कि मामला महज हादसा है या कोई साजिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मैं हूँ कृति पौराणिक। प्रस्तुत है नॉन स्टॉप अंताक्षरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अंताक्षरी का खेल शुरू होता है म अक्षर से, तो आइए शुरू करते हैं अंताक्षरी और आपको सुनवाते हैं म अक्षर से ये गाना।

0: अंताक्षरी का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी.

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम को शुरू करते हैं प्यार जिंदगी है फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है सुरेंद्र मिश्रा ने और संगीत दिया है जयदीप ने।

अब आप सुनिए हीरो नंबर 1 फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

श्रेया घोषाल की आवाज में अब आप सुनिए जब वी मेट फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अब आप सुनिए कल होना फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है अलका याग्निक और शान ने, शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है, हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम होता है, नैना।
1: अमन
0: स्वीट स्वीटू स्वीटू स्वीटू स्वीटू प्यार करती हो तुम से।
2: आई लव फ्रैंकी।
1: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में अब आप सुनिए थ्री इडियट्स फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर पाकुड़ में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क तक खाली घड़ा लेकर मार्च किया। नेताओं ने हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, जिससे देश में कहीं भी इलाज आसान हो सके। लोहरदगा जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जनगणना का महत्व समझाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सटीक आंकड़ों से ही विकास योजनाएं बनती हैं, इसलिए सभी नागरिक सही जानकारी देकर सहयोग करें। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दोपहर मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हुई। इस बारिश से पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र

0: आइए अब सुनते हैं क्रीड़ा जगत।
1: क्रीड़ा जगत। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज चर्चा में सबसे पहले बात होगी आईपीएल की। इसमें 6 टीमें दौड़ में हैं प्लेऑफ की लड़ाई में। अब हर मैच निर्णायक साबित होगा, 50 से अधिक मैच हो चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में कुछ गजब का ट्रेंड हो रहा है, उस पर भी चर्चा होगी कि जो टीमें अच्छा क्षेत्र रक्षण कर रही हैं वो टीमें भी हार रही हैं। पर्सनालिटी में बात होगी जसप्रीत बुमराह की, आईपीएल में उनके परफॉर्मेंस की चर्चा होगी। आईपीएल अपडेट में सप्ताह के मैच होंगे, खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईपीएल की, जिसमें 6 टीमें अभी दौड़ पे हैं और प्लेऑफ की लड़ाई में हर मैच निर्णायक होगा। आईपीएल 2026 के लगभग 50 मैच पूरे हो चुके हैं और प्लेऑफ के लिए जंग अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बचे हुए 20 मैचों में 4 टीमों का फैसला होगा जो नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। हालांकि शानदार प्रदर्शन कर रही सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ के दावेदारों में शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद कम बची है, लेकिन अगर सभी मैच जीतने में सफल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो दावेदारी पेश कर सकती है। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन टूर्नामेंट से अभी पूरी तरह से टीमें बाहर नहीं हैं। अब कुछ टीमों की हम चर्चा करें, जैसे सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सिर्फ एक जीत जरूरी है। सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में लगभग जगह मिल चुकी है, जगह उसकी पक्की हो गई है। अब अपने बाकी 3 मैचों में से सिर्फ एक जीत की उसे जरूरत है। टीम 16 अंकों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच सकती है, नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार है। 18 और 22 मई को सीएसके और आरसीबी के साथ इसका मैच है, एक मैच भी जीत जाती है तो ये टॉप पे रहेगी। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इसे 2 मैच में जीत की जरूरत है। राजस्थान रॉयल्स को भी प्लेऑफ में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मैच चाहिए, जिसमें टीम 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। हालांकि टीम का प्रदर्शन इस सीजन में उतार चढ़ाव भरा रहा है, राजस्थान रॉयल्स को अपने नेट रन रेट को भी मजबूती से बनाए रखना होगा। 17 मई, 19 मई और 24 मई को दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के साथ ये इन टीमों के साथ इसकी भिड़ंत होगी, और इसमें 2 मैच भी अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती है स्थिति बहुत अच्छी होगी। पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स को अपने बाकी 4 मुकाबलों में कम से कम 2 में जीत चाहिए, जिससे टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है और प्लेऑफ लगभग तय हो जाएगा। हालांकि एक जीत के बाद भी उनके अच्छे नेट रन रेट से उन्हें फायदा मिल सकता है, लेकिन लगातार 3 हार ने टीम को थोड़ी परेशानी में डाला है। पंजाब किंग्स को जल्द फॉर्म में वापसी करनी होगी। 14 मई को मुंबई के साथ, आरसीबी के साथ 17 को और लखनऊ के साथ 23 मई को मुकाबला होगा और कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में सिर्फ 4 टीमों के बराबर अंक पर है, लेकिन उसका नेट रन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी 4 मैचों में कम से कम 2 बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उसका नेट रन रेट सुधरे और राजस्थान रॉयल्स या ऊपर की 4 अन्य टीमों में से किसी एक को पछाड़ सके। 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ और 21 मई को चेन्नई के साथ उसके मैच हैं और इसी में उसे सुधार की जरूरत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी मैचों में से 2 से 3 जीत की जरूरत है। टीम 16 से 18 अंकों तक पहुंच सकती है, उसका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों में से एक है, इसलिए 14 अंक पर भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। अगर बाकी नतीजे उसके पक्ष में गए तो आरसीबी शीर्ष में 2 जगह बनाने में प्रबल दाव

चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी चार मैचों में से कम तीन मैच जीतने होंगे। टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है। सीएसके का नेट रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है, जो कई टीमों के 14 और 16 अंक पर फंसने की स्थिति में अहम भूमिका अदा कर सकता है। चेन्नई ने अपने अंतिम मैचों में शानदार वापसी की है और अभी 15 मई 18 मई और गुजरात के साथ 21 मई को, 15 को लखनऊ साथ, हैदराबाद के साथ 18 को और 21 मई को गुजरात के साथ मैच है, जिससे उसका नेट रन रेट और भी अच्छा हो सकता है। अब कुछ टीमें ऐसी हैं जो किस्मत के भरोसे चल रही हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी मैच जीतने होंगे और एक भी हार उसकी उम्मीदों को खत्म कर सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो केकेआर को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बाकी पांच मैच जीतने होंगे, जिससे टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है। हालांकि उनका खराब नेट रन रेट चिंता का विषय है, ऐसे में चार जीत के बाद 15 अंक भी शायद आए। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है, इसलिए टीम को सभी मैच जीतने होंगे। साथ ही यह भी उम्मीद करनी होगी कि 12 अंकों पर मौजूद बाकी टीमें अपने अधिकतर मुकाबले हार जाएं, यानी एक तरफ इनको जीत की गारंटी बनानी होगी और दूसरे तरफ देखना होगा कि दूसरी टीमें हार रही हैं। मुंबई का खराब रन रेट भी प्लेऑफ की उम्मीदों में बाधा बना हुआ है। और एक टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। टीम अगर अपने बाकी सभी पांच मैच जीत लेती है तो भी अधिकतम 14 अंक तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा उनका बेहद खराब रन रेट जो है वो 10 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन को लगभग नामुमकिन बना रहा है। तो ये विश्लेषण है दोस्तों, और जो बाकी 20 मैच बचे हैं इसमें 6 टीमें दौड़ में हैं और एक दूसरे के हार जीत पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीमें मजबूत स्थिति में और जिनको जितने मैच जीतने की ज़रूरत है उनको जीतना होगा, तभी वो टीम प्लेऑफ की लड़ाई में आगे आ सकती हैं। इस बार जो आईपीएल हो रहा है उसमें गजब का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्रिकेट में एक कहावत है कि कैच ही मैच जिताते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इस इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के दौरान कुछ अलग ही ट्रेंड सामने आ रहा है। जो टीमें अधिक मैच जीत रही हैं उनकी तुलना में हारने वाली टीमों की फील्डिंग बहुत अच्छी है। इस बार श्रेष्ठ फील्डरों में से एक विराट कोहली, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों के हाथों से गेंद ड्रॉप होती नजर आ रही हैं। आईपीएल 2026 सीजन में सबसे अधिक कैच पकड़ने की बात करें तो टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे आगे आता है। केकेआर ने 88.6% मौकों को भुनाया है, यानी कैच पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद टीम ने 9 मैच में से सिर्फ 3 में जीत दर्ज की है। अंक तालिका में शीर्ष पर कायम पंजाब किंग्स सबसे अधिक कैच पकड़ने वालों की सूची में 9वें नंबर पर है। अगर हम शुरू से देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने जितने भी मैच खेले उसमें 88.6 मौके ऐसे रहे जिसमें उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। क्षेत्र रक्षण उनका बहुत अच्छा रहा, इसके बावजूद टॉप टेबल में पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 87.2% मौकों को भुनाया है। बेंगलुरु ने 85.7, लखनऊ ने 83.7, गुजरात ने 80.5, चेन्नई ने 75.4, मुंबई ने 75, हैदराबाद ने 74.2, पंजाब ने 72.7 और दिल्ली ने 65.2 मौके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कैच पकड़े हैं। बावजूद इसके जो सबसे टॉप पे हैं टीम उन्होंने ही ज़्यादा कैच छोड़े हैं, बल्कि जो टीम सबसे नीचे है उन्होंने क्षेत्र रक्षण भी बहुत अच्छे किए, बावजूद उनके जीत का प्रतिशत काफ़ी कम है। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं स्टार

en Baj Jasprit Bumrah ki. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और उनके सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए किसी पूरे सपने की तरह से गुजर रहा है। उन्होंने इस सीजन के 10 मैचों में से 109 से ज़्यादा की औसत से सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं। यह सीजन में 30 से अधिक ओवर फेंक चुके किसी गेंदबाज का सबसे खराब आंकड़ा है। घरेलू मैदान बानखेड़े स्टेडियम में तो बुमराह की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहां उन्होंने अब तक 24 ओवर फेंके हैं, 241 रन देकर महज 1 विकेट उन्होंने लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुमराह के रहते हुए भी मुंबई के खिलाफ 244 रन चेज कर लिए। उस मैच में बुमराह ने 24 रन लुटाए और 5 छक्के खाए, जो 2021 के बाद उनका सबसे महंगा स्पेल था। वजह की बात करें तो वानखेड़े जो है वो चुनौती के रूप में है। बुमराह ने 37% ओवर तब डाले जब पिछले ओवर में 15 से अधिक रन बने थे। इस सीजन में वानखेड़े स्टेडियम गेंदबाजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ रन रेट 11.03 है और बाउंड्री का प्रतिशत 25.7 है। अब तक यहाँ खेली गई 12 पारियों में से 11 में स्कोर 195 के पार गया है, जो किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा है। 8 बार तो 220 से ज़्यादा रन बने हैं। ऐसी पिचों पर किसी भी गेंदबाज के लिए किफ़ायती रहना असंभव है और यही स्थिति बुमराह के साथ हो रही है। मुंबई इंडियंस का पेस अटैक इस बार सबसे कमजोर साबित हुआ है। नई गेंद के विशेषज्ञ ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने मिलकर 13 ओवरों में 170 रन लुटाकर सिर्फ 1 विकेट लिया। जब दूसरे छोर से लगातार रन बरसते हैं तो रन रोकने और विकेट निकालने का सारा दबाव बुमराह पे आ जाता है और यही वजह है कि बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इस सीजन बुमराह का इस्तेमाल विकेट लेने वाले गेंदबाज के बजाय एक फायर फाइटर के रूप में किया गया। बुमराह ने जो ओवर फेंके हैं उनसे ठीक पहले ओवरों में दूसरे गेंदबाजों ने औसतन 12.57 के रन लुटाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 37% बार यानी 13 बार बुमराह को तब गेंदबाजी थमाई गई जब उसके ठीक पहले ओवर में 15 से ज़्यादा रन बने हैं। यानी जब भी टीम बुरी तरह से पिट रही होती है उस समय बुमराह को लगाया जाता है और वैसे स्थिति में बुमराह की भी पिटाई होती है। इस भारी दबाव का असर उनकी गेंदबाजी की लय पर साफ साफ दिख रहा है। उनकी औसत रफ्तार गिर कर 132.1 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। पहले जहाँ वह लगातार डॉट गेंद फेंककर बल्लेबाजों का दम घोटते थे, इस सीजन में वह औसतन 4 ओवर में सिर्फ 1 बार 3 डॉट गेंद फेंक पाए हैं। भले ही बुमराह की इकोनॉमी रेट 8.89 है, लेकिन मुंबई के बाकी गेंदबाजों की इकोनॉमी 11.17 है। इसका सीधा मतलब है कि बुमराह अपनी टीम के बाकी गेंदबाजों के मुकाबले प्रति ओवर 2.28 रन कम दे रहे हैं। पूरे सीजन में अपनी टीम के अन्य गेंदबाजों की तुलना में इनका बड़ा सकारात्मक अंतर केकेआर के नरेन का ही है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, बुमराह का परफॉर्मेंस इस बार आईपीएल में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल अपडेट में इस सप्ताह हुए कुछ खास मैचों की चर्चा करेंगे। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में अपना सबसे बड़ा रन चेज करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। यह उसकी लगातार 3 हार के बाद तीसरी जीत रही। लखनऊ ने सीजन में पहली बार 200 से अधिक का स्कोर बनाते हुए मुंबई को 229 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई ने सिर्फ 18.4 ओवर में ही मुकाबला जीत लिया। लखनऊ को सीजन की 7वीं और लगातार 6ठी हार झेलनी पड़ी। इस हार ने लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया, क्योंकि अब शेष 5 मैच जीतने के बावजूद टीम 14 अंक तक पहुँच सकेगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रोहित और प्लेयर ऑफ द मैच रिकेल्टन ने तेज शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए। तिलक और सूर्या के फेल होने के बाद नमन धीर और जैक्स ने 8 गेंदे शेष रहते हुए मुंबई को लक्ष्य तक पहुंचाया।
निकोलस पूरन और मिचेल मार्स के बीच 35 गेंदों में हुई 94 रनों की तूफानी साझेदारी के दम पर लखनऊ ने पारी की धमाकेदार शुरुआत की थी। शुरुआती 10 ओवर में टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 141 था, जो इस फेज में लीग के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि पारी के दूसरे हाफ में टीम तेजी से रन जुटाने में नाकाम रही। एडन मार्करम और हिम्मत सिंह की जोड़ी 49 गेंदों महज 68 रन ही जोड़ सके, इसके चलते लखनऊ अच्छी शुरुआत के बावजूद 250 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। आईपीएल के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया और इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर आ गई। उसने पंजाब को दूसरे स्थान पर खिसका दिया। घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 235 का स्कोर बनाया। जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी, टीम वहीं ठहर गई। हैदराबाद ने रिकॉर्ड 11वीं बार 220 से अधिक का लक्ष्य बचाया। हैदराबाद ने जब भी 220 से ज़्यादा रन बनाए हर बार जीत पक्की रही। इसके साथ ही हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9वीं जीत दर्ज कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला। एक वेन्यू पर किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा लगातार मैच जीतने के मामले में अब हैदराबाद की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। बुधवार को हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ 4 विकेट खोकर 235 रनों का अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ओपनर अभिषेक शर्मा 35, ट्रेविस हेड ने 38 रन बनाए और उन्होंने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़ दिए। इस स्कोर पर अभिषेक व 84 के स्कोर पर हेड आउट हुए। फिर ईशान और क्लासेन के बीच तीसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 88 रन की साझेदारी हुई। फिर क्लासेन ने रेड्डी के साथ 63 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब खराब शुरुआत से उभर नहीं सकी। उसकी ओर से सिर्फ कोनाली ने 59 गेंदों में 107 रनों की बड़ी पारी खेली। 227 दिन के कोनाली लीग इतिहास में सबसे युवा विदेशी शतकवीर बन गए। हैदराबाद के कप्तान कमिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा पंजाब की खराब फील्डिंग। हैदराबाद की बैटिंग पिच पर पंजाब ने 3 कैच ड्रॉप किए। ईशान को महज 9 रन पर जीवनदान मिला और फिर 18 रन पर उनका दूसरा कैच टपकाया गया। एक बार कोनोली और दूसरी बार फर्ग्यूसन ने उन्हें जीवनदान दिया। क्लासेन जब 9 रन के निजी स्कोर पर थे तब शशांक ने उनका कैच ड्रॉप किया। विकेटकीपर प्रभ सिमरन ने ईशान की एक सरल स्टंपिंग का मौका भी गंवा दिया। अगर पंजाब ये कैच पकड़ लेती तो हैदराबाद 200 रनों के भीतर ही सिमट सकती थी। जीवनदान मिलने के बाद क्लासेन और किशन ने 50 जड़े। तो टर्निंग पॉइंट ये रहा, लगातार कैच छूटने की वजह से भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब खेल जगत की कुछ खास खबरें। नॉर्थ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम इस महीने के आखिर में मैच खेलने के लिए साउथ कोरिया जाएगी। साउथ कोरिया के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। 20 मई को टीमें आएंगी। यहां उनका मुकाबला एएफसी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में घरेलू टीम सुवन एफसी से होगा। अगर नॉर्थ कोरिया इस मैच से पीछे हटता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लगेगा। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं, दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते जो हैं उसे ठीक करने की पहल है। एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारतीय दल के लिए ऐतिहासिक साबित हो रही है। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने 27 मेडल पक्के कर लिए हैं। अंडर 15 गर्ल्स टीम ने अपने शानदार खेल से संभावित 15 में से 14 मेडल सुरक्षित कर लिए हैं। वहीं अंडर 15 बॉयज टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 15 में से 13 मेडल पर कब्जा जमाया है। दोनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने कई मुकाबले रेफरी स्टंप्स कॉन्टेस्ट के आधार पर जीते। सास्ता बसंत, अशोक कुमार और प्रशांत ने यूएई के मोहम्मद अल बनाई और मायद अल यामी को पहले राउंड में मात दी है। महिला अंडर 18 हॉकी टीम एशिया कप की तैयारियों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 से 20 मई तक यहां 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज इस महीने के आखिर में जापान के
काका मिगाहारा में शुरू होने वाले अंडर

19 एशिया कप की तैयारी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों टीमों के लिए यहां भारतीय खेल प्राधिकरण साई के केंद्र में 19 अप्रैल से अभ्यास शिविर लगाया गया था। पुरुष टीम के कोच सरदार सिंह ने कहा कि इस शिविर के दौरान मुख्य ध्यान सभी विभागों में खिलाड़ियों के बुनियादी कौशल और क्षमता को मजबूत करने पर रहा, ताकि वे आधुनिक हॉकी की जरूरतों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीम के खिलाफ मैच हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला टीम की कोच रानी रामपाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीम के खिलाफ मैच खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर पर खेलने और अंडर 18 एशिया कप की तैयारी करने का शानदार मौका होगा। भारत को मंगलवार को यहां AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जापान की मजबूत टीम के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले हाफ में कोई गोल नहीं खाया, लेकिन दूसरे हाफ में जापान की टीम पूरी तरह से हावी रही और 3 गोल करके जीत दर्ज करने में सफल रही। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद मैच का 1 घंटा पूरा होने से ठीक पहले योमी हयासी ने जापान को बढ़त दिला दी। फिर युहा इकेदा ने 2 गोल करके 4 बार की चैंपियन टीम को ग्रुप बी में दूसरी जीत दिला दी। पूर्व विश्व चैंपियन ओजस देवताले ने भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का नेतृत्व करते हुए मंगलवार को यहां तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के क्वालिफाइंग राउंड में व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष 10 में जगह पक्की की। बर्लिन में 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतकर भारत के पहले पुरुष विश्व चैंपियन बने देवताले ने यहां क्वालिफाइंग में भारतीय खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 711 अंक हासिल करके कुल मिलाकर 7वां स्थान हासिल किया। इससे भारतीय टीम को भी फायदा हुआ और वह सिर्फ 3 में जगह बनाने में सफल रही। साहिल जाधव ने भी 711 अंक बनाए, लेकिन केंद्र पर सर्वाधिक निशाना लगाने के कारण देवताले उनसे आगे रहे। भारतीय टीम के एक अन्य खिलाड़ी कुशल दलाल ने कुल मिलाकर 18वें स्थान पर रहकर इस तिकड़ी को पूरा किया। इस तरह से भारत ने टीम स्पर्धा में 3रा स्थान हासिल किया। हालांकि एशियाई खेलों के पदक विजेता अभिषेक वर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह 705 अंकों के साथ 25वें स्थान पर खिसक गए, जिससे उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन वह व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में पूर्व चैंपियन अदिति स्वामी 700 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रही। वह क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहने वाली अमेरिका की एलिक्स रोई से 7 अंक पीछे रही। भारत की अन्य खिलाड़ियों में प्रगति 697 अंकों के साथ 19वें स्थान पर रही, जबकि कई बार विश्व कप जीत चुकी ज्योति सुरेखा वेन्नम 21वें स्थान पर खिसक गई। और अब कुछ स्थानीय खबरें। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 से 20 मई तक होने वाली घरेलू सीरीज के लिए 24 सदस्यीय अंडर 18 पुरुष और महिला टीमें घोषित कर दी हैं। महिला टीम में झारखंड की 6 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। महिला टीम में संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो, सुगन सांगा और सूति कुमारी ने जगह बनाई। वहीं पुरुष टीम में आशीष तानीपूर्ति और जैसन कंडुलुना को शामिल किया गया। महिला टीम में शामिल खिलाड़ियों में 2 सिमडेगा की, 3 बरियातू हॉकी सेंटर और 1 रांची एक क्लब सेंटर की है। वहीं पुरुष टीम में शामिल दोनों खिलाड़ी खुट्टी के हैं। 4 मैचों की सीरीज भोपाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र पर खेली जाएगी और यह जापान के काकामिंगहारा में 29 मई से 6 जून तक होने वाले पुरुष और महिला अंडर 18 एशियाई कप की तैयारियों के लिए बहुत ही अहम है। टीम का चयन राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के दौरान किया गया, जिसमें 42 खिलाड़ियों के समूह में से मैच फिटनेस और तकनीकी कौशल के आधार पर 24 लोगों को चुना गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित होने वाली स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड को ग्रुप ए में मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ रखा गया है। झारखंड टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 मई को मेघालय के साथ उसने कर दी। इसके बाद 13 मई को राजस्थान, 15 मई को आंध्र प्रदेश और 17 मई को बिहार से मुकाबला होगा। सभी मुकाबले आर के आश्रम ग्राउंड नारायणपुर में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में झारखंड चैंपियनशिप में

35 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। झारखंड को ग्रुप ए में मेघालय, बिहार और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ रखा गया है। होटवार स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीसरी सीकोकई ऑल इंडिया ओपन कराटे में 27 स्वर्ण जीतकर झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं 14 स्वर्ण के साथ बंगाल दूसरे जबकि 11 स्वर्ण पदक के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा। सीकोकई कराटे इंटरनेशनल झारखंड के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता 8 स्वर्ण पदक के साथ इंडियन आर्मी की टीम चौथे स्थान पर रही। महिला वर्ग में झारखंड की साक्षी ओझा ने खिताब जीता, चैंपियन रही। वहीं पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब इंडियन आर्मी के मोहन को दिया गया। अनुशासित टीम का खिताब पूर्वी सिंहभूम की टीम को मिला। इंटर मिलान ने परमा को 2-0 से हराकर तीन दौर के मैच शेष रहते ही इटालियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया। इंटर मिलान को ट्रॉफी हासिल करने के लिए केवल एक ड्रॉ की जरूरत थी। उसने परमा पर जीत से 2025 के चैंपियन और दूसरे स्थान पर कापीज नेपोली पर 12 अंकों की अजेय बढ़त बना ली। यह इंटर मिलान का 21वां सीरी ए खिताब है। वह सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में यूवेंट्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंटर मिलान की तरफ से पहला गोल पहले हाफ में मार्कस थुरम ने किया जबकि 37 वर्षीय हेनरिक मकीतायान ने 80वें मिनट में दूसरा गोल दागा। इस सत्र में दो ट्रॉफियां जीतने की दौड़ में शामिल इंटर मिलान 10 दिनों में इटालियन कप के फाइनल के लाजियो का सामना करेगा। क्रिश्चियन च्यू के मार्गदर्शन में टीम ने इस पूरे सीजन में आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया है। पार्मा के खिलाफ जीत दर्ज करते ही टीम ने अंक तालिका में इतनी बढ़त बना ली कि अब उन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये तो थे खेल समाचार दोस्तों। अब इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण। इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। संकलन एवं प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी की थी। प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में आप सुना करते हैं फिल्म संगीत। संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक मुख्य समाचार का। साथ ही आप संध्या 7 बजे सुना करते हैं प्रादेशिक समाचार।

5:02 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के संबंध में, साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी मानव जीवन के लिए आवश्यक पेड़ पौधे। आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और रोचक तथ्य। 5:30 पर श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा पौधों की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, नशा मुक्त जीवन से आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सुरक्षा उपकरण और सतर्कता से जीवन की रक्षा। छह बजकर 2 मिनट पर कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा फसल बीमा योजना, साथ ही डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह आपको जानकारी देंगे मिट्टी की जान हरी खाद। छह बजकर 32 मिनट पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी लू से बचाव के संबंध में, साथ ही आप सुन सकेंगे पसंद के लोकगीत। 7:15 पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज का यह कार्यक्रम खड़िया भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा नशापान से दूर रहें, साथ ही चर्चा की जाएगी आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता। 7:45 पर अंग्रेजी वार्ताओं के कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे आर्यन भारद्वाज की वार्ता द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। एक बार फिर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा रजनीगंधा रात्रि 8 बजे से। 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड, आज का विषय है वन और पशु पक्षी। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, आज के हमारे कलाकार होंगे अभिराम पाठक, आप सुन सकेंगे राग बहार में आलाप और धमार गायन। 10:00 इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में आप सुना करते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले और साथियों को फिल्म साहब बीबी और गुलाम में। शब्द रचना शकील वदायनी की है, संगीत हेमंत कुमार का।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम को फिल्म किस्मत में। शब्द रचना SH बिहारी की है, संगीत OP नैयर का।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं फिल्म मेरा साया में आशा भोसले को। शब्द रचना रज़ा मेहदी अली खां की है, संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म उमराव जान में आशा भोसले को। शब्द रचना शहरयार की है, संगीत खयाम का।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म पाकीज़ा में लता मंगेशकर को। शब्द रचना मजरू की है, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

0: फिल्म पाकिजा के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने 2 से 15 मई तक चलाए जा रहे विशेष जलापूर्ति शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जलपुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में। आज की सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा देने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार नदीम श्रवण के संगीतबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। संध्या के 5:30 पर प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संध्या के 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर प्रसारित होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संध्या के 6:30 पर आप आनंद लेंगे संथाली कार्यक्रम का। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम रजनीगंधा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के 8:45 पर। हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप आनंद लेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का, जो कि प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि के 10:00 का। रात्रि के 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं, हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार नदीम श्रवण को। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल समीर के हैं और धुन, जैसा कि आप सभी को पता है, नदीम श्रवण की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायपासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार नदीम श्रवण के संगीतबद्ध चुनिंदा गीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, गायक कलाकार कुमार शानू और आशा भोसले के युगल स्वरों में फिल्म सलामी से। बोल लिखे हैं मदन पाल ने और धुन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, फिल्म सलामी से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार कुमार सानू और आशा भोसले के युगल स्वरों में। बोल लिखे थे मदन पाल ने और धुन थी नदीम श्रवण की। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाया एक ही संगीतकार नदीम श्रवण के संगीत पर चंद चुनिंदा गीत।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सुनीता हांसदा और
1: ठाकुर चंद्र मुर्मूती की ना
0: जोहार। तो कैसे हैं किसान भाइयों एवं बहनों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ हमारे मित्र ठाकुर जी हैं और आइए उनसे भी जान लेते हैं उनका हालचाल, क्योंकि देखते हुए मौसम को जिस तरह से वो परिवर्तन हो रहा है तो वो अपने आप को किस तरह से रख रहे होंगे।
1: सारी कथा के सुनीता मैं अड़ी बेस कथा भी कुल के लिए चिकाते अली हूँ चैसी सलाह अली यहाँ मकान और चैसी होर सलाह तहें कहते हैं नितो जहाँ लेकर सीतू नशेना फिर रियार दा को ही चुकना हड़मोरे तो नवा लगे तो नशेना तो हड़मोर हो असना को मदा लेकर जिनिस को ही चुकन गया।
0: बिल्कुल।
1: तो इन हो अब चैसी होर कना वो अब नपाय रहे वो तहें गया तहें दरे गया वो और अब चास पस्टम वो कुरुंटू दरे।
0: बिल्कुल। और जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहन अपने आप को इतना मजबूत रखते हैं, मौसम के साथ उनके जो है सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, इसलिए उनके जो है स्वास्थ्य में ज़्यादातर अगर हम लोग कहें तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, वो अपने आप को हर मौसम में एकदम सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि हमारे किसान भाई बहन स्वस्थ होंगे, आज की कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। हर बार की तरह जो हमारा विषय होता है चर्चा का, और कार्यक्रम की शुरुआत हम किसी चर्चा को लेकर ही करते हैं, तो आज भी हमारे पास चर्चा का विषय है टमाटर, मिर्च एवं बैंगन की खेती और उनके उन्नत किस्म के बारे में। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किसान भाइयों बहनों, अगर हम

0: टमाटर, मिर्च और बैंगन की जो है उन्नत खेती की बात करें तो ये जून और जुलाई में खेती करना बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और जहाँ तक उन्नत किस्मों की बातें की जाए तो इसमें अगर आप अच्छे किस्मों को लेकर के खेती करते हैं तो उसकी उपज भी बढ़िया होती है, क्योंकि वो उन्नत किस्म उपचारिक रहते हैं। जैसे हम लोग बीज उपचार करते हैं तो वो उपचारित रूप से जो है वो रहते हैं, और उनको अगर हम लगाते हैं सही जानकारी के साथ, सही तरीके साथ, तो ये हमारे फसल उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देते हैं।
1: सही कथा कन गया। और नित जहाँ सुनीता मैं तीन लेकर लेकर टमाटर मैंने बिलती और जहाँ होना मिर्च की खेती, मिर्च मरीच जिनिस तो अब साल भर बन रोय दड़ा चाष दाबन कोई उनका समय तो बनू बिलती जहाँ चाष समय मे नो सीजन में बन चाबा के दूसरा सीजन हजार नितबन बरसाती समय जहाँ जिनिस को बन उडोक चाषबास करते माने तो जून खन जुलाई धाबी जिनिस बन चाष
0: बिल्कुल
1: तो उना लगते हो बेस बेस उन्नत किस्म को लगती है। और हाँ हाँ हाट बाजार खन किरिंग करते चाष तो नसेना मेहनत जहाँ बन मेहनत गे बेकार गे बेकार बुझेगा तो उना खातिर जहाँ तीन हो दड़ा उपचारित बीज जहाँ मेना मतलब रान आकान इता जहाँ मेना उनकाना के किरिंग लगती करना
0: जीवनते
1: अब उन्हें खन बेस उत्पादन हुयुमा और उत्पादन साथ अब उन्हें खन बेस लाभ जाम दाड़े बो मा।
0: बिल्कुल। और जहाँ तक हम हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि अगर आप जो भी उपचारित बीज होते हैं उसको लेकर के अगर आप बीजों का बेड तैयार करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे पौधे तैयार करते हैं और मतलब 25 से 30 दिनों के अंदर में जो है स्वस्थ पौधों की रोपाई अगर हम सही दूरी पर जो कि 60 से जो है 45 की जो सेंटीमीटर की दूरी होती है, अगर सही चीज़ों को जानकारी करते हुए और आप सही तरह से अगर उसकी खेती करते हैं और साथ ही साथ अगर आप जैविक खादों का इस्तेमाल करके जल की अच्छी निकासी के साथ जो है सिंचाई का व्यवस्था करते हुए अगर आपका सारा चीज़ जो है सही तरह से रहता है तो वाकई में ये हमारे जो फसल होते हैं वो मुनाफा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं।
1: सर कथा के सुनीता मैं और इन साथ लगती कन गया से जहाँ अगर मैं लेके लेकर से नित अब हासा तो नोड़े उपयुक्त गया नवा को चास लगे ते दो
0: बिल्कुल
1: मेन लेखान तो चांदो मुका के नुकन जगह रे अब चसी को जनम आकर बना
0: मेन बिल्कुल बिल्कुल
1: नसेना मेहनत में ना खाली समय बन पाजाय मा और उन्नत किस्म बन जल मा
0: बिल्कुल
1: जहाँ तीन हुई दाड़े आ जैविक खाद के प्रयोग हुई खांगे अड़ी नपाय
0: बिल्कुल
1: चिकाते उन्हें कौन बेस जिनिस अब हम बोल जो मा किन्हों जहाँ किन्हीं आ कौन बेस जिनिस को जाम दारे आ
0: बिल्कुल
1: और अब हम लाभ बेस पर जाम दारे
0: बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात है कि हमारा जो मिट्टी का जैविक मतलब पोषक तत्व होता है वो भी बरकरार रहता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम गहराई से जुताई करते हैं, जमीन की अगर गहराई से जुताई करते हैं तो हमारा जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी में वो बढ़िया रहती है और हमारे जो भी मतलब खरपतवार होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है ठाकुर जी कि अगर हमारा खेती होता है तो ये अप्रैल मई के समय में हमारे खेतों को अगर आप अच्छी तरह से जोत ले तो जो भी हमारे खरपतवार होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो धूप की वजह से खत्म हो जाते हैं और हमारा मिट्टी जो है उर्वरक शक्ति से भरपूर हो जाता है। कुछ उन्नत किस्मों के बारे में हम हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें पूसा रूबी, पूसा शीतल, प्लाम टोमेटो हाइब्रिड 1 ये उन्नत किस्म होती हैं। उसी तरह बैंगन के लिए पूसा पर्पल क्लस्टर, काशी संदेश, पंत ऋतुराज और मिर्च के लिए पूसा सदाबहार और उन्नति ये कुछ किस्म है जिससे आपको अच्छी फसल की प्राप्ति हो सकती है।
1: सही कथा के सुनीता मैं नहीं तो जहाँ का राजन क्या उन्नत किस्म मैंने बेज बेस इत जहाँ ते अब बेस आमदनी चे बेस मुनाफा वो जम रहा है अब चास करते अब मेहनत दी करते
0: बिल्कुल
1: तो जैसे वो हम इसी को नहीं तो अड़ी बेस अपन मरा बना जमे थे नुआ टमाटर मिर्च बैगन की खेती विषय दी करते नहीं तो हम समय में ना गया नुआ चास पस्ता बोल पूरा मोटू दाड़े
0: बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों जानकारी का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले समय हो चला है आप सभी का मनोरंजन का। हम आपको सुनवाते हैं बंगाली हंसदा और साथियों के स्वर में ये संथाली लोकगीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव

0: कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही हैं।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: बीमा करे।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: किसान भाइयों बहनों, आइए आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान भेंटवार्ता में आपको जानकारी देते हैं कुटीर उद्योग के रूप में अगरबत्ती निर्माण। इसकी जानकारी दे रहे हैं ललित पिंगवा और उनसे बातचीत कर रहे हैं ठाकुर चंद्र मुर्मू।
5: जाओगे नवा नवा चासबास रिया किली मिली चासबास रिया वो जगह रिया इन दो तीसिंग इनका ना वो जगह रिया चीज को ना हाथों से रिया वो मिटो रोजगार रूप तो आगो दही मिटो कुटीर उद्योग चिल के तो वही होबा दही हुआ एन बी से ᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱮᱰᱚ ᱪᱟᱥᱤ ᱦᱮᱠᱮ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
6: ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱮ

0: किलोरे 300 ग्राम
1: 300
0: ग्राम ᱱᱮᱛᱮ ᱟᱱᱟ ᱫᱩᱥᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱮᱛᱮ ᱠᱟᱞᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱢᱜᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟ ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟ 20% ᱠᱟᱥ ᱠᱤ ᱡᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱱᱮᱛᱮ 5% ᱱᱮᱱᱟ ᱠᱟᱯᱩᱨ ᱠᱟᱪᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱱᱮ 5% ᱱᱮᱛᱮ ᱯᱩᱞ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱛᱮ 10% ᱱᱮᱛᱮ ᱞᱚᱦᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟ 20% ᱱᱮᱛᱮ ᱞᱟᱠᱲᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱚᱱᱟ

सामग्री रही है ना, ये इना 20% कस की जाल को मिता है ना, 5% ने ना कपूर कचरी को मिता है ना, 5% ते पुल बंग पत्ते 10%, ने ते लोहवान को मने इना 20%, ने ते लकड़ी का कोयला को ना

कभी कभी कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़े बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत और यशोतासु की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। सरायकेला पाड़ापुर दिशावली ग्राम पहाड़पुर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं शिवम शिवाजी, सूरामणि मुंडरे, हीरामणि मुंडरे, हेमांतो मुंडरे, डोबरो मुंडरे, साजन मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरे, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और एफ एम शिवा मुंडरे। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार ने। लालपुर मारो से हमें खत लिखने वाले श्रोता है कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी और रितेंद्र कुमार ध्रुव। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दत्तरंगी के द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार

शंकर वर्मा और चाविंद्र कुमार वर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है खरसवा पति साई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और सोनवा गांव पोड़ा हट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक। छोटा निमड़ी चायबासा से अपनी फरमाइश हम तक भेजी है बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार ने। ऊपरकोट मोहल्ला चकुंडली बुलंदशहर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। सदाबहार श्रोता संग्राम मोहत जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश हमें भेजी है मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोशमीन तैमूर तड़वी और भैया तड़वी ने। ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से हमें खत लिखा है शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिधि गुप्ता ने। इस वक्त पीली कॉलोनी लखनऊ के मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखड़ी गुप्ता और राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से हमें खत लिखा है मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सुरियांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन ने। बेरड़ी से हमें खत लिखने वाले श्रोता है होम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम धुराबंदा भाटापाड़ा के प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म कभी कभी से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है ग्राम पोंडा काटर से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पांतोर बांकीड़ा, डोली बांकीड़ा और रघुनाथ चरहट। बाड़मेर राजस्थान गांधी चौक से खत लिखा है बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष ने। दौलतबाद मुरादाबाद के जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अवासी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। डबावली हरियाणा के जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म कभी कभी से।

कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भोला राम मधुर, बेबी मधु और जयश्री देवी, बड़ी बाजार चायबासा के विनोद कुमार पवन और श्रीमती मीना पवन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। शातुल शहर राजस्थान के ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार ने भी हमें खत लिखा है। चायबासा से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता है मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम। छत्रपति संभाजी नगर के राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोग। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है।

कलाकार लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमित कुमार दामोदर। बड़सिंगी बुलढाणा के अमोल मानकर, सुभाताई मानकर श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनना चाहा मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र अभिजीत कवांडकर, राही सरिता कवांडकर, सिद्धांत कवांडकर और प्रिंस एकांश कवांडकर ने। विश्वकर्मा नगर नागपुर से सरस कवांडकर, वैशाली कवांडकर और कुमारी ध्वनि कवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मछली गोदाम कैनीमुड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बड़बिल उड़ीसा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत। गांव चोहलदा से बागपत से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ के अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनना चाहा अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी की फिल्म प्यार झुकता नहीं से। आवाजें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

0: लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में। स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है, गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है।
1: तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए?
0: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है, लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी।
1: और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है?
0: बिल्कुल फायदा हुआ है, उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह खरीद लिए हैं, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा।
1: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के? वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ हैं। क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में?
0: बिल्कुल सर आ गई है, क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं बच्चे के लिए, तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना वो अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है।
1: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं?
0: हाँ सर होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं।
1: चितारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सर।
1: सो विनोद, कमिंग बैक टू यू आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट चितारी सेड टू अस दैट ही इज बीन इन दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 4 decades, वेयर चाइना हैज डोमिनेटेड द ग्लोबल टॉय मार्केट। नाउ हाउ इज इंडिया नाउ कम्पीटिंग, लाइक पीपल लाइक चितारी कम्पीटिंग विद देम, एंड वॉट इज आर एज ओवर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स?
2: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segments. A large number of small manufacturers shut down operations or shifted to trading imported products due to unsustainable competition. The government's interventions, especially the mandatory BIS quality standards and the high import duties, fundamentally changed the industry sentiment after the Vocal for Local campaign and the Honorable Prime Minister's reiterating over and over again that we need to look at, you know, how do we get back our own manufacturing and stop buying toys from all over the world. So if you ask me how MSMEs have reacted, a lot of them, like Chitari just talked about, have restarted or expanded domestic production capacities. They have increasingly adopted quality standards. They have modernized operations, improved product safety, and also invested in better manufacturing practices. So today, what you have is you don't have people that are just making products for the Indian market, but for a globally competitive ecosystem throughout the world. And Indian consumers obviously have this improved consumer trust in Make in India products. You've seen huge emergence due to the Startup India initiative, where you have had startups which are focused on STEM toys, educational kits, do-it-yourself learning products, AI-enabled learning tools, sustainable toys, culturally rooted Indian storytelling products. And that is where you are finding even the generational toy makers that are finding opportunities in combining manufacturing with education, creativity, digital learning. We just heard this from this artisan from Sawantwadi. We've had toy clusters from Etikopaka, for example, or Kondapalli or Chennapatna, which have actually seen renewed attention throughout the world. And they've seen exports from India, which, again, due to the emergence of e-commerce platforms, digital marketplaces, and people around the world coming to know about the fact that, you know, what we offer is something that no other country in the world offers. We offer completely organic toys, and they are highly educational. I remember, even in my own childhood, toys from Chennapatna that used to come, and how we used to use them to spur our creativity and stuff. So today, MSMEs have much easier access to affordable finance. We have common testing and education facilities for capacity building of entrepreneurs through the Vishwakarma and all the other schemes that the government of India has put in place. There's great branding and

0: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था दिसंबर में, इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि पूरा होगा।
0: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
0: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक, जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
1: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
0: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
1: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यह जवाबदेही की गई है।
0: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: परीक्षित भारत जीराम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से तो पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
0: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
1: दो तीन बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था,

0: क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं, गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके का काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे, राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा जमीन पर, ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे, जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओज हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा इसके लिए समर्पित होगा या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
0: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी, अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी, हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा, तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है, शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वो कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गाँव को होगा और इसीलिए बात हो रही है ना कि गाँव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गाँव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते

0: गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही उसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गांव का एक मजदूर आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरीके की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी की खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पे मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Mantan.

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म प्रोफेसर से। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं फिल्म सफ़र से, गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म मेरे हमसफर से।

फिल्म मेरे हमसफ़र से ये गीत आपने सुना। अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म ममता से।

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है। इतना लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम हुआ।

फिल्म ममता के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट

0: वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TBK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting